वढ़हंस महल्ला पंजवा प्रभ करण कारण समरथा राम राख जगत सगल देह हथा राम सम्राथ शरणा।

मिलहै जे सतगुर लागह साचे पाए। सतगुर सदा दयाल है अवगुण शब्द जलाए। अवगुण शब्द जलाए दूजा पाओ गवाए। सच्चे ही सचराती सच्चे शब्द सदा सुख पाए।

पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जपे हो संत हो राम नाम पौ जल बिखतारी गुर पूरे हर उपदेशया गुर विटड़े हो।

जिन हर ते आया सब किश तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा धन दिया सुखदाता निखोट न कभी ही जाई आनंद पै

करहू सहियै दुलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बेकै राजे इंद्र समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो।

सतगुर सेव खर्च हर बंद हो मत जान हो आज के काली। हर के संत जप हो हर जपना हर संत चला हर नाली। जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन

हर के संत जप्यो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तृष्णा अगन बुझानी शिव चरयो चंद चंदा की तुम वड पुरख

पतित पवित्र मिल साध गुर हर नाम हर रस चाख बहाओ तन तन वड भाग मिलियो गुर साधु मिल साधु लिव उन मन लाग बा तृष्णा अगन बुझी।

हर हर हर भगत दृढ़ावहो, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर जस

शेष रहै। आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वतर रमणं नानक अगनासन जगदीश्वर है।

बिखम थान हुंजिन रखिया तिस तिल ना विसार। प्रभ बिसरत सुख कदे नाहे जा सह जन्म हार। सलोक

सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग हर सिमरत तन मन हरिया लह जाहे विजोग साध संग हर गुण रमहु बिनसे सब रोग सलोक कुटंब जतन करण माया अनेक उदमहि।

गीत गोविंद है सर्व दोख निवारण है, शरण सूर भगवान है, जपंत नानक हर हर हरे।

रहाओ। ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर्ण काहू तानी, ऐसो अमर मिलियो भगतन को, रात रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा मरा

हर कथा हर जस साध संगत सियो एक मोहत न एव मन लायो बिगस्यो पेख रंग कुसुंभ को पर ग्रह जोहन जायो चरण कमल सियो पाओ न कीनो नह सतपुरख मनायो तावत को ताव है बहु भांति ज्यों तेली बलद परमायो नाम दान।

मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ। तिस जन कौ मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो, तन माया संपै तिस देवो, जिन हर मीत मिला।

नित निफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया, जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया। ऐसा बाजी संसार ना चेत हर नामा खिन मह।

तिलंग महला चौथा हरकियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां बलिहारी गुर अपने गुर कौ बल जाइयां आए मिल गुर

पछताने हाथ फलगा, फिर पछताने हाथ फलगा, हर राख राख जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रत पलगा।

मन मुख दज मरन जमपुर बधे मारी है वेला ना लहन गुरमुख जन्म सकार था सच्चा शब्द लगन आत्म राम प्रगासया सहजे सुख रहन गुर का शब्द विसारे।

सरोवर है वडभागी पुरख लहन। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजया से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों गुरमुख नाम लगन। तुर पूरब होवै लिखया गुर भाणा मन लैन। वड

आनंदिनो शब्द रवहो अनहद शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो कर आए हर गुण गावहो नारी आनंदिन भगत करहें गुर आ गए सा धन कंत प्यारी गुर का शब्द वसे।

सब महे रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम, गुर शब्द रवै रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम, प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी, घट घट रवया सोई गुरमत।

गाओ मंगलो नित हर जन हो पुन्नी इच सबाई राम। रंग रते अपने स्वामी सेती मरै न आवै जाई राम।

मन अभिमाना कहत सुनत सबे सुख पावहि मानत पाहे निधाना बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए।

अपेक्षा कर ही मह सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया अभिमान सद ही लागा सहज ध्यान अन दिन गावै एको नाम इस जुग मह वड्याई पाई पूरे गुरते नाम ते आई जय देखां तह रहया समाई।

तन तन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया जाए बस हो वड पागनी सखिए संता संग समाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह जन्म ना मरण ना आवन जाना।

रहाओ। खोजत खोजत खोजया नामै बिन कूर, जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसा पूर। जित जित लाभ हो।

दृष्ट दृष्टाए अब मान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब मान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब मान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल अतुल नह तुलिया।

संग हर बुहिया जब जगन्नाथ जगदीश कुशैया शरण परे से जन उबरे ज्यों प्रहलाद उदार समैया रहा पार अठारह मह चंदन ऊतम।

रख रख चरण हर ताल पूरैया हर कै रंग रत्ता मन गावै रस रसाल रस शब्द रवैया निज कर धार चोवै।

में सगले कुल उधरे, नाम हमारे कार्य सीद, नाम संग मनुआ गीद, नामे ही हम निरपौ पहे, नामे आवन जावन रहे।

जोगी जुगत सहज कर वासै एक दृष्ट एको कर देखिया भीखिया पाए शब्द तृप्ता सह रहा।

लकड़ी बिखरजरी मंझ पहार गुरका शब्द विचार जोगी दुख सुख सम करना सोग बेयोगी भुगत नाम गुर शब्द विचारी।

तह हर हर हर रस भोगनी रहाव। सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी। आज्ञाकारी सदा सुख पुंचय जत कत पेखो हर गुनी। नह शिव शक्ति जल नहीं पवना तह आकार नहीं मेदनी। सदगुर जोग

रहाउ। गुण गावत होवत परगास, चरण कमल मह हुए निवास, चरण कमल मह हुए निवास, संत संगत मह

ये कुटुंब छोड़ पर भवन करहे ग्रह शरीर महे हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है।

कहे नानक मुक्त होवहें जोगी साचे रहें समाए। राम कली महला तीजा भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई। संत हो गुरमुख दे वड्याई रहाओ साच रहो सदा।

पूजा करै सब लोक संत हो मन मुख थाए ना पाई शब्द मरै मन निर्मल संत हो ए पूजा थाए पाई पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिवलाई।

नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास ध्याएणा।

शांत। प्रभ विपत निवारण तिस बिन अवरना कोय जियो, सदा सदा हर सिमरिय जल थल महियल सोए जियो। जल थल महियल पूर रहया, एक निमख मन होना विसरै, गुर चरण लागे दिन सभागे।

कंध सहज गुफा कर जाने साचा नानक साचे भावै साचा किस कारण रह तजो उदासी किस कारण इहो भेख निवासी किस वखर के तुम वणजारे क्यों कर साथ लंघावहो पारे गुरमुख खोजत पए उदासी दर्शन कै ताई भेख निवासी साच वखर

सच पाए। सो शब्द का कहां वास कथि अले, जित तरिय भवजल संसारो, त्रै सत अंगुल वाई कहिय, तिस कहो कवन अधारो।

नानक आए से प्रवान पहे जे सगले कुल तारेन महला तीजा। गुरु जिन्ना का अंधला सिख भी अंधे कर्म करें, ओए पहाणे चलन अपने नित झूठ।

शब्द रवैण सब कट मेरे हों सबना अंदर जिस है खुआई तिस कौन कहे जिस है दिखाला वाटड़ी तिस है पुलावै कौन जिस है पुलाई पंध सिर तिस है दिखावै कौन महला पहला।

सममोहिं गुरपुरै मेलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जय वड अवर ना कोए पौड़ी।

कौड़ी। जो तद पहाणा जंत सो तद बुझई, जो तद पहाणा जंत सो दरगह सिझई। जिसनो तेरी नजर हो मैं तिस गई, जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई।

हर हार हर उतारियो जन नानक नाम समाया माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता सतसंगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पछाता रहा।